0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Biak nga, Judah, Kapela Vo, Meyuda, Rap Knowledge, The Akbar, Souls of Africa,

0: और मैं पाचू
1: इटियुनो और रेडियो पियुम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटियुनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
1: Ruba.